चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शांद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्रय न मित्रय प्रे है पवित्रय प्रधि सदिशय दृश्य कृषय भगवती शंत्वय प्रसाद कहते किया शिदिश किया भिज भेसा किया गंज कर्म किया पंच परम किया भिज लोक किया दित सुख के भूत भरने के विभूत करने के राजम प्रवाह धर्म तुझा है के आसुक परने के सर्वा परने के जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपन रूप है के आदा देव है के आप अपेव है के चित्रंग महीने के अधीन है के रोजी रजा के रही

करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है, सर्वत्र अवमानी है, सर्वत्र दानी है, सर्वत्र गौण है, सर्वत्र पौन है, सर्वत्र देश है, सर्वत्र भेष है, सर्वत्र सर्वत्र राज है, सर्वत्र साज है, सर्वत्र दीन है, सर्वत्र लीन है, सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, सर्वत्र भेष है, सर्वत्र काल है, सर्वत्र पाल है, सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है, सर्वत्र राज है, सर्वत्र सुख है, सर्वत्र भुख है, के सर्वत्र त्राण है, सर्वत्र प्राण है, सर्वत्र देश है, सर्वत्र भेसा है, के सर्वत्र मानी है, सदैव प्रधानी है, सर्वत्र जापी है, सर्वत्र थापी है, सर्वत्र पान है, सर्वत्र मान है, सर्वत्र इंद्र है, सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्न उर्वजू है, तमाम उर्वजू है, हमेश्वर सलामे सली खत्मुदामे गनीमुल सिकास्ता है, गरीबुल परास्ता है, बिलंदुल मकान ने जमीनुल जमान ने तमीजुल तमाम में रजूल निदान ने हरीफुल आजी में रजायक यकीन ने अनेकुल तरंग है, अपेद है, अपंग है, आजीजुल निवाज है, गनीमुल खराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रय मुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सोजुक्त सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है।

आसन चिंत है सुनिंत है आलिख है आदिख है आलेख है अपेख है अटह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है आजाद है आजाद है चरपट शांत है प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हरता सर्वं करता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता।

स्वरूपे अपंगं वे भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध वे भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंग नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता है नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है घुसरल चराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दिहंद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है कंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सरपुल गुवन है हमेशुल अरवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुले माँ है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचुन प्रकाश है कि हमें तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि हमें तो विभूत है कि हमें तो प्रसाद कि आत्म प्रवाह है कि अचल अनंग है कि हमें तो अपंग है मद भार छंद त्वै प्रसाद मार बरे अगन हर नर पर पान्य अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम और शेजे अंग आसन अभंग उपमा अपार गत में तू उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास हुआ जान बाहु एक सदा हु अंकार आद कथनी अनाद कल खंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरणा मन छिज गात अज जन बात तन झंझ गात तन रंज बात तन टुट भंडार ठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अणब

मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्वोबारण है, त्रित की तरन है, जग की करण है, मनमानी है, जग जानी है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपाशी है, सर्वनाशी है, करुणाकर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, भवभंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवस है, जस के जास है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राज, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योति ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे, अलंकार अलंके, नमो आश्वासे, नमो बांक बंके अपंगे।

जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा है आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जान भेद भेद अर आलम।

सुनै गुंग जो यह सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चतलाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाओ निकनत नर के रहे हो जो या कि एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस फुन तीन के हिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधा ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जपते तुमरे तपते को आंतरे नहीं आन्यो राम नहीं पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब वेद कहे हम एक न जान्यो।

राम दास हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाइय, जिस डठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ, निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब।

कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताकै बलिहारै जिन पूरन पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभु अपने

कटे हो मेरो नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजो नानक सतगुर।